प्यालेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाँडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरूको लागि सिल्वर प्यालेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान में 100%

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहियो
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनि सूट
4: अनि मलाई

अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: 104.8.
1: कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है।
2: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841।

0: से 36
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 98

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहियो
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनि सूट
4: अनि मलाई

एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। संपर्क नंबर 5320711 9802076888।
7: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: प्यालेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमाडौँ फोन नम्बर 42 43 736
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल, मंगलम सोनम चामल, मंगलम सोना स्टीम चामल, स्वाद र संतुष्टि को लागी।

श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तक कर जा रहे हों। श्री सीता जी राम जी वन में हैं, ऐसा मन में विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब हाथी घोड़े रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल चलने के लिए ये रास्ते योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं।

बार सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है, यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है, विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को

सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा।

0: उसने कहा,
1: हे भाइयों, जल्दी करो और अब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे।
0: सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को वंदना कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाए। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों। अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को वंदना की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा,
1: हे भाइयों, धोखा न लाना, आज मेरा बड़ा भारी काम है।
0: यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे,
2: हे वीर, अधीर मत हो,

0: हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की ही कर देंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर जुझारू ढोल बजाओ इतना कहते ही बाई और छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, अर्थात जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा,
1: भारत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भारत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं, शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है।
0: यह सुनकर निषाद राजगुह ने कहा,
2: बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अतएव
3: हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा।

0: उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते।
1: ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा,
2: ये श्री राम का मित्र है।
1: इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर वंदना की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो।

गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं, प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो रहे हैं। जो लोग राम राम कहकर जमा ही लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम अर्थात मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर चांडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं।

0: इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी, इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। भाई सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता ही रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा।
1: हे प्रभो, कुशल के मूल, आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से पीढ़ियों सहित मेरा कल्याण हो गया।

करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में विचार कर, अर्थात कहां तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहां अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहैतुकी कृपावश अपना लिया। ये समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूं और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूं, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूं। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक वंदना की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं, तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए।

भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, श्री राम घाट को जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं ही श्री राम जी मिल गए हो। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो काम धेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं डेरा उठा ले चले।

लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौसल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं, मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया।

कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदीक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु अर्थात सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन अर्थात शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राण नाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश शैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर फट नहीं जाता है। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है।

मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए न है न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी के जन्म अर्थात अवतार लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता, सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है।

0: श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन भर उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझे पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हो। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा,
1: हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निश्चिंत सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है,

प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, अर्थात उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषादराज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए।

श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए।